0: गोय इला मरानी कैसेट एल्बम का समवेल बरसानी एंड द एल्बम नेम इज फ्रिक.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e